0: This ain't no deja vu. This is my love for you. 28 years down and 100 more to go. इस कहानी के 100 साल हैं, जवानी के 100 साल हैं, जिंदगानी के 100 साल हैं.
1: मैं अक्सर लोगों को डराया करता हूँ.

Let's get a feeling for Coke Studios' new wave. That's what they're calling it. तो इस दफा का कोक स्टूडियो बिल्कुल ही अलग है, नया है, हटके है. एफ्यूजिक ज़ोहा एनाली सुमरा.

जीने का है मजा दिल देखे. आई लाइक द मैसेज. आतिफ असलम लेटेस्ट एल्बम सुबह आईना का मेरा फेवरेट ट्रैक. पहले तो सुबह आईना था बट अब बात चल निकली है इश्क की तो मेरा पैगाम इश्क है जहां तक पहुंचे. और अगर आपके दिल तक पहुंच गया तो वाह जी वाह क्या बात है.

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। और ख्वाहिशों की बात करें तो इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश हर एक की है और 1 बिलियन व्यूज जब हिट कर जाएं तो माय गॉड, डिड आई जस्ट से 1 बिलियन व्यूज? ओह या, आवर वेरी ओन पसूरी अली सेठी शेगिल हिट्स 1 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। दे आर सेलिब्रेटिंग इट एंड सो आर वी। जस्ट कैंट गेट इनफ ऑफ दिस पसूरी, राइट? वेल, पसूरी चीज ही ऐसी है, यू नो, life just cannot get enough of it and we cannot get rid of it.

0: Friday, September 25th. For information and sponsorships, 1-855-360-7469.
1: Suraj huwa matham, chand jalne laga.
0: Witness the voice of a generation. Sonu Nigam live in concert.
2: Deewana, deewana.
3: Thank you, Aagaaz Restaurant, for supporting education and offering scholarships to the community, inspiring and motivating our youth and giving back to the community. Aagaaz Restaurant and Shaukat Maredia, an institution itself.
4: Behan ke saath 15 saal pehle maine kaam shuru kiya tha jab Aagaaz ko koi bhi pehchanta nahi tha. Us waqt Rehan ne mere saath dosti ki, Aagaaz ko promote kiya. Uska jo radio station tha uski chabi mujhe de di ke Shaukat bhai jab bhi aapki marzi kare आप आ जाए. उस बंदे ने इतना दिल से आगाज को प्रमोट किया, सपोर्ट किया. इसकी वजह से मैं आगाज में रेहान के साथ जुड़ा होता हूं. और प्लस रेहान डज अमेजिंग शो. आगाज इज ए बिग ब्रांड नाउ एंड आई वांट टू एसोसिएट मायसेल्फ विद क्लासिक पीपल लाइक रेहान हु नो दिस बिजनेस. रेहान के ब्लड में लिखा हुआ है कि इस तरह के कॉन्सर्ट करना, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर.
3: आगाज रेस्टोरेंट, द मोस्ट फेमस ट्रेडमार्क ऑफ आवर सिटी, शाइनिंग ग्लोबली बिकॉज ऑफ इट्स excellence, service, presentation, and taste.
0: Ya Habibi, Ya Habibti, Ya Luck.
5: Come to Meritra Lounge
0: in the heart of Richmond at 6218 Richmond Avenue. Restaurant, sports bar, hookah lounge. The ambiance, presentation, food and atmosphere you will love with family and friends.
5: All your favorite Arabic food.
0: Meze starters, salads, bowls, wraps, grilled kebabs. Don't miss the Persian signature dishes, lamb shank, grilled salmon, lamb chops, Meritra favorites, the loaded fries with beef or chicken shawarma, and your favorite desserts. Weekdays, open till midnight. Friday and Saturday, open till 2 a.m. Meritra.cafe, like on Instagram to get $10 discount, or just mention Hum FM.
5: Hi, hi, hi, Divano.
6: The Lena Shah Show.
5: You're in tune to The Lena Shah Show.

somehow feels that हम वापस उस आवारापन वाले दौर में चले गए हैं. So many songs of that era are making a comeback. और उस पे ये मौसम बदल रहा है. Feels unreal, surreal. But जिंदगी का हर लम्हा ऐसे ही है. Unreal, surreal. If we accept the challenge to live in the moment.

इश्क आए नाशिक को निगल लेता है, फिर शीन के तेज धारी नुमा दांत उसे चबाना शुरू करते हैं। फाइनली आशिक गहरे काफ में उतरता है और कभी निकल नहीं पाता।

वेलकम वेलकम इश्क की इस महफिल में जहां पे हमने शमा जलाई है. नॉट रियली, ये तो अलाउ है जिसके हम सब दीवाने परवाने.

0: बांधने जा रहा है।
1: मेरी सांसों में बसा है तेरा ही
0: प्यार। 17th of October, NRG.
1: तेरी याद हम सफर सुबह शाम।
0: Tickets $35 and up starting. $35 से शुरू कर रहे हैं, आप ले सकते हैं उनको from ticketmaster.com. प्यारे प्यारे फ्लोर टिकट्स के लिए VIP टिकट्स, VIP टिकट्स के लिए, यू नो ह्यूस्टन, जाइए onsulekha.com या फिर कॉल कीजिए रेहान सिद्दीकी को 713-545-4115. An unforgettable evening awaits you. The Raja of Romance. आपकी रोमांटिक कहानी में राहत फतेह अली खान का गाना जरूर होगा और वो गाना 17 अक्टूबर की शाम को परफॉर्म भी होगा। तो रीलिव योर रोमांस, रीलिव योर लव स्टोरी

0: तो यूं देखा
1: ये कातिल आंखें
0: मुसव्विर हो गई आंखें।
1: एक शाम उन कातिल आंखों के नाम, और अगर आंखों का जिक्र आ रहा है तो राहत फतेह अली खान साहब का ये गीत, नैनों की जबान पे भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त रसीद न खाता, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। एक शाम उन आंखों के नाम, 17 अक्टूबर शाम 7 बजे पहुंच जाइए एट एनआरजी। ग्रैब योर टिकट्स एट ticketmaster.com, sulekha.com।
0: नैनों की मत मानियो रे।
1: इवेंट प्रेजेंटेड बाय पैंथर्स पेट्रोलियम, फॉर्चून ग्रुप गेम्स इन एसोसिएशन विद वन स्टेप डायग्नोस्टिक, एंड ऑफ कोर्स पावर्ड बाय डॉक्टर यास्मीन कुरैशी।

नैना ठग लेंगे। लिरिक्स बाय गुलजार, राहत फतेह अली खान साहब। 17th October at Energy.

0: Friday, September 25th. For information and sponsorships, 1-855-360-7469.
1: Suraj hua matham, chand jalne laga.
0: Witness the voice of a generation. Sonu Nigam live in concert.
1: Deewana, deewana tera.
2: Thank you, Aga's Restaurant, for supporting education and offering scholarships to the community, inspiring and motivating our youth and giving back to the community. Aga's Restaurant and Shaukat Maredia, an institution itself.
3: Behan ke saath 15 saal pehle maine kaam shuru kiya tha jab Aga's ko koi bhi pehchanta nahi tha. Us waqt Rehan ne mere saath dosti ki, Aga's ko promote kiya. Uska jo radio station tha, uski chabi mujhe de di ke Shaukat bhai, jab bhi aapki marzi kare आप आ जाए. उस बंदे ने इतना दिल से आगाज को प्रमोट किया, सपोर्ट किया. इसकी वजह से मैं आगा में रेहान के साथ जुड़ा होता हूं. और प्लस रेहान डज अमेजिंग शो. आगाज इज ए बिग ब्रांड नाउ एंड आई वांट टू एसोसिएट मायसेल्फ विद क्लासी पीपल लाइक रेहान हु नो दिस बिजनेस. रेहान के ब्लड में लिखा हुआ है कि इस तरह के कॉन्सर्ट करना, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर.
2: आगाज रेस्टोरेंट, द मोस्ट फेमस ट्रेडमार्क ऑफ आवर सिटी, शाइनिंग ग्लोबली बिकॉज़ ऑफ इट्स excellence, service, presentation and taste.
0: Ya Habibi, Ya Habibti, Yalla, come to Meritra Lounge in the heart of Richmond at 6218 Richmond Avenue. Restaurant, sports bar, hookah lounge. The ambiance, presentation, food and atmosphere you will love with family and friends.
4: All your favorite Arabic food.
0: Meze starters, salads, bowls, wraps, grilled kebabs. Don't miss the Persian signature dishes. Lamb shank, grilled salmon, lamb chops, Meritra favorites, the loaded fries with beef or chicken shawarma, and your favorite desserts. Weekdays open till midnight. Friday and Saturday open till 2 a.m. Meritra.cafe. Like on Instagram to get $10 discount or just mention Hum FM.
5: Hi, hi, hi, Divano.
6: The Lena Shah Show.
5: You're in tune to The Lena Shah Show. A

0: बंधने जा रहा है।
1: मेरी सांसों में बसा है तेरा ही
0: दिल। 17th of October, NRG.
1: तेरी याद हम सफर सुबह हो शाम।
0: Tickets $35 and up, starting $35 से शुरू कर रहे हैं। आप ले सकते हैं उनको from ticketmaster.com। प्यारे प्यारे फ्लोर टिकट्स के लिए VIP टिकट्स, VVIP, VVVVIP टिकट्स के लिए, you know, Houston. जाइए onsalekha.com या फिर कॉल कीजिए रेहान सिद्दीकी को 713-545-4115. An unforgettable evening awaits you. The Raja of Romance. आपकी रोमांटिक कहानी में राहत फतेह अली खान का गाना जरूर होगा और वो गाना 17 अक्टूबर की शाम को परफॉर्म भी होगा। तो रीलिव योर रोमांस, रीलिव योर लव स्टोरी

0: तो यूं देखा
1: ये कातिल आंखें
0: मुसव्वर हो गई आंखें।
1: एक शाम उन कातिल आंखों के नाम
2: रीनू।
1: और अगर आंखों का जिक्र आ रहा है तो राहत फतेह अली खान साहब का ये गीत नैनों की जुबान पे भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त रसीद न खाता। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। एक शाम उन आंखों के नाम 17 अक्टूबर शाम 7 बजे पहुंच जाइए एट एनर्जी। ग्रैब योर टिकट्स एट ticketmaster.com sulekha.com। Event presented by Panthers Petroleum, Fortune Group Games in association with One Step Diagnostic, and of course powered by Dr. Yasmeen Qureshi.

नैना ठग लेंगे। लिरिक्स बाय गुलजार, राहत फतेह अली खान साहब। 17th October at NRG.

0: Friday, September 25th. For information and sponsorships, 1-855-360-7469.
1: Suraj huwa matham, chand jalne laga.
0: Witness the voice of a generation. Sonu Nigam live in concert.
1: Deewana, deewana.
2: Thank you, Aga's Restaurant, for supporting education and offering scholarships to the community, inspiring and motivating our youth and giving back to the community. Aga's Restaurant and Shaukat Maredia, an institution itself.
3: Behan ke saath 15 saal pehle maine kaam shuru kiya tha jab Aga's ko koi bhi pehchanta nahi tha. Us waqt Rehan ne mere saath dosti ki, Aga's ko promote kiya. Uska jo radio station tha uski chabi mujhe de di ke Shaukat bhai jab bhi aapki marzi kare आप आ जाए. उस बंदे ने इतना दिल से आगाज को प्रमोट किया, सपोर्ट किया. इसकी वजह से मैं आगाज में रेहान के साथ जुड़ा होता हूं. और प्लस रेहान डज अमेजिंग शो. आगाज इज ए बिग ब्रांड नाउ एंड आई वांट टू एसोसिएट मायसेल्फ विद क्लासी पीपल लाइक रेहान हु नो दिस बिजनेस. रेहान के ब्लड में लिखा हुआ है कि इस तरह के कॉन्सर्ट करना, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर.
2: आगाज रेस्टोरेंट, द मोस्ट फेमस ट्रेडमार्क ऑफ आवर सिटी, शाइनिंग ग्लोबली बिकॉज ऑफ इट्स excellence, service, presentation and taste.
0: Ya Habibi, Ya Habibti, Ya Lot.
4: Come to Meritra Lounge
0: in the heart of Richmond at 6218 Richmond Avenue. Restaurant, sports bar, hookah lounge. The ambiance, presentation, food and atmosphere you will love with family and friends.
4: All your favorite Arabic food.
0: Meze starters, salads, bowls, wraps, grilled kebabs. Don't miss the Persian signature dishes, lamb shank, grilled salmon, lamb chops, Meritra favorites, the loaded fries with beef or chicken shawarma, and your favorite desserts. Weekdays, open till midnight. Friday and Saturday, open till 2 a.m. Meritra.cafe, like on Instagram to get $10 discount or just mention Hum FM.
5: Hi, hi, hi, Divano.
6: The Lena Shah Show.
5: You're in tune to The Lena Shah Show.

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। और ख्वाहिशों की बात करें तो इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश हर एक की है और 1 बिलियन व्यूज जब हिट कर जाएं तो माय गॉड, डिड आई जस्ट से 1 बिलियन व्यूज? ओह या, आवर वेरी ओन पसूरी अली सेठी शेगिल हिट्स 1 बिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब। दे आर सेलिब्रेटिंग इट एंड सो आर वी। जस्ट कैंट गेट इनफ ऑफ दिस पसूरी, राइट? वेल, पसूरी चीज ही ऐसी है, यू नो, life just cannot get enough of it and we cannot get rid of it.

0: Friday, September 25th. For information and sponsorships, 1-855-360-7469.
1: Suraj huwa matham, chand jalne laga.
0: Witness the voice of a generation. Sonu Nigam live in concert.
1: Deewana, deewana.
2: Thank you, Aga's Restaurant, for supporting education and offering scholarships to the community, inspiring and motivating our youth and giving back to the community. Aga's Restaurant and Shaukat Maredia, an institution itself.
3: Behan ke saath 15 saal pehle maine kaam shuru kiya tha jab Aga's ko koi bhi pehchanta nahi tha. Us waqt Rehan ne mere saath dosti ki, Aga's ko promote kiya. Uska jo radio station tha, uski chabi mujhe de di ke Shaukat bhai, jab bhi aapki marzi kare आप आ जाए. उस बंदे ने इतना दिल से आगाज को प्रमोट किया, सपोर्ट किया. इसकी वजह से मैं आगाज में रेहान के साथ जुड़ा होता हूं. और प्लस रेहान डज अमेजिंग शो. आगाज इज ए बिग ब्रांड नाउ एंड आई वांट टू एसोसिएट मायसेल्फ विद क्लासी पीपल लाइक रेहान हु नो दिस बिजनेस. रेहान के ब्लड में लिखा हुआ है कि इस तरह के कॉन्सर्ट करना, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर.
2: आगाज रेस्टोरेंट, द मोस्ट फेमस ट्रेडमार्क ऑफ आवर सिटी, शाइनिंग ग्लोबली बिकॉज ऑफ इट्स excellence, service, presentation and taste.
0: Ya Habibi, Ya Habibti, Ya Lot.
4: Come to Meritra Lounge
0: in the heart of Richmond at 6218 Richmond Avenue. Restaurant, sports bar, hookah lounge. The ambiance, presentation, food and atmosphere you will love with family and friends.
4: All your favorite Arabic food.
0: Meze starters, salads, bowls, wraps, grilled kebabs. Don't miss the Persian signature dishes, lamb shank, grilled salmon, lamb chops, Meritra favorites, the loaded fries with beef or chicken shawarma, and your favorite desserts. Weekdays open till midnight. Friday and Saturday open till 2 a.m. Meritra.cafe. Like on Instagram to get $10 discount or just mention Hum FM.
4: Hi, hi, hi, Divano.
5: The Lena Shah Show.
4: You're in tune to The Lena Shah Show.

somehow feels that हम वापस उस आवारापन वाले दौर में चले गए हैं. So many songs of that era are making a comeback. और उस पे ये मौसम बदल रहा है. Feels unreal, surreal. But जिंदगी का हर लम्हा ऐसे ही है. Unreal, surreal. If we accept the challenge to live in the moment.

इश्क इन आशिक को निगल लेता है, फिर शीन के तेज धारी नुमा दांत उसे चबाना शुरू करते हैं। फाइनली आशिक गहरे काफ में उतरता है और कभी निकल नहीं पाता।

0: उस्ताद राहत फतेह अली खान, एनर्जी अरीना, 17 अक्टूबर।
1: अख मेरी हस देवे जदों तैनू तकदा, जान तो भी ज्यादा तू पास मैनू लगदा।
0: Grab your tickets from Ticketmaster.com, starting at $35.
1: खाली हाथों को है तोहफा तू रब दा, तेरे जैसा होर कोई हो ही नहीं सकदा।
0: For $500 tickets and up, call Rehan Siddiqui 713-545-4115.
1: मेरे सजदों को साथी एक तेरा दर काफी, खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा।
0: नित खैर मंगा सोना।

0: तो यूं देखा
1: ये कातिल आंखें
0: मुसव्विर हो गई आंखें।
1: एक शाम उन कातिल आंखों के नाम
2: रीनू।
1: और अगर आंखों का जिक्र आ रहा है तो राहत फतेह अली खान साहब का ये गीत नैनों की जबान पे भरोसा नहीं आता, लिखत पढ़त रसीद न खाता। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। एक शाम उन आंखों के नाम 17 अक्टूबर शाम 7 बजे पहुंच जाइए एट एनआरजी। ग्रैब योर टिकट्स एट ticketmaster.com, sulekha.com।
0: नैनों की मत मानियो रे।
1: इवेंट प्रेजेंटेड बाय पैंथर्स पेट्रोलियम, फॉर्चून ग्रुप गेम्स इन एसोसिएशन विद वन स्टेप डायग्नोस्टिक एंड ऑफ कोर्स पावर्ड बाय डॉक्टर यास्मीन कुरैशी।

0: Friday, September 25th. For information and sponsorships, 1-855-360-7469.
1: Suraj huwa madham, chand jalne laga.
0: Witness the voice of a generation. Sonu Nigam live in concert.
1: Deewana, deewana.
2: Thank you, Aga's Restaurant, for supporting education and offering scholarships to the community, inspiring and motivating our youth and giving back to the community. Aga's Restaurant and Shaukat Maredia, an institution itself.
3: Rehan ke saath 15 saal pehle maine kaam shuru kiya tha jab Aga's ko koi bhi pehchanta nahi tha. Us waqt Rehan ne mere saath dosti ki, Aga's ko promote kiya. Uska jo radio station tha, uski chabi mujhe de di. Ke Shaukat bhai, jab bhi aapki marzi kare आप आ जाए. उस बंदे ने इतना दिल से आगाज को प्रमोट किया, सपोर्ट किया. इसकी वजह से मैं आगाज में रेहान के साथ जुड़ा होता हूं. और प्लस रेहान डज अमेजिंग शो. आगाज इज ए बिग ब्रांड नाउ एंड आई वांट टू एसोसिएट मायसेल्फ विद क्लासी पीपल लाइक रेहान हु नो दिस बिजनेस. रेहान के ब्लड में लिखा हुआ है कि इस तरह के कॉन्सर्ट करना, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर.
2: आगाज रेस्टोरेंट, द मोस्ट फेमस ट्रेडमार्क ऑफ आवर सिटी, शाइनिंग ग्लोबली बिकॉज ऑफ इट्स excellence, service, presentation and taste.
0: Ya Habibi, Ya Habibti, Ya Luck.
4: Come to Meritra Lounge
0: in the heart of Richmond at 6218 Richmond Avenue. Restaurant, sports bar, hookah lounge. The ambiance, presentation, food and atmosphere you will love with family and friends.
4: All your favorite Arabic food.
0: Meze starters, salads, bowls, wraps, grilled kebabs. Don't miss the Persian signature dishes, lamb shank, grilled salmon, lamb chops, Meritra favorites, the loaded fries with beef or chicken shawarma, and your favorite desserts. Weekdays open till midnight. Friday and Saturday open till 2 a.m. Meritra.cafe. Like on Instagram to get $10 discount or just mention Hum FM.
5: Hi, hi, hi, Divano.
6: The Lena Shah Show.
5: You're in tune to The Lena Shah Show. A Rehan.

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ